मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था ओ राओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ। मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ। मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ। सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आर जा। पवन पीण पियाओ चंद सूरज दोए गुफैना देखा। सुपने साउन ना थाओ पी तेरी कीमत ना पवै। हौ के बड़े आखा नाओ। साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखणा। जे भावै करे तुमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए। अग्गी सेती जालिया भस्म सेती रल जाओ। पी तेरी कीमत ना पवै हौ के बड़े आखा नाओ। पंखी होए कै जे पवा सह असमानी जाओ। नदरी किसै ना आवो ना किश पिया ना खाओ। पी तेरी कीमत ना पवै हौ के बड़े आखा नाओ। नानक कागद लखमणा पड़ पड़ कीचै भाओ। मसू टूट ना आवई लेखन पौन चलाओ। पी तेरी कीमत ना पवै हौ केवड़ आखा नाओ। श्री

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमै निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमै रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी ने आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतिपाल ही लेखे सास विरास।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इहो कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्स ना होए, खोटे जात ना पत है खोटना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाह अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो ढल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जो

अपना शिशु का अपने आसन तय जन्म मरण कहो का विनाशन। जब पूर्ण करता प्रसोय तब जम की त्रास कहो के सोए। जब अवगित गोचर पवे का तब चित्र